0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: दुनिया को जीतने की बहुत कोशिश करते हैं और इस जद्दोजहद में खुद को हार जाते हैं। भीड़ में अपनी एक अलग जगह बनाने की दौड़ में पता नहीं किसी के करीब होते हैं कि नहीं, पर हाँ, खुद से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए एक बैलेंस बनाए रखना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बैलेंस अपनी पर्सनालिटी में प्योरिटी और मैच्योरिटी का।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: एक बहुत इंटरेस्टिंग टेल है रिलेटेड टू द पर्सन हुम वी ऑल टेंड टू इग्नोर एट ऑल द टाइम्स बिकॉज वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। मैं बात कर रही हूँ माँ की। कहते हैं जब गॉड माँ को बना रहे थे तो बहुत ओवर टाइम किया। किसी एंजल ने उनसे आकर पूछा कि इतना टाइम इस मूरत पर काम क्यों कर रहे हैं, तो गॉड का आंसर था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि ये इलास्टिक या प्लास्टिक की नहीं है। शी विल बी एबल टू रन ऑन ब्लैक कॉफी एंड लेफ्ट ओवर्स। एक गोद है जिसमें एक साथ बहुत से बच्चे छुप सकते हैं, और वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको मुझे देनी है 3 pairs of eyes। वेल, बात यहीं खत्म नहीं होती है, कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ट्रैक्स।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

पेंसिल मेकर ने पेंसिल को तैयार कर डिब्बे में डालने से पहले उसे कुछ यूं समझाया कि मैं तुम्हें यानी पेंसिल को दुनिया में भेज रहा हूँ, बट कुछ चीजें हमेशा याद रखना। पहली कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत से अच्छे काम कर सकती हो। दूसरी, वक्त बे वक्त जब तुम्हें शार्पन किया जाएगा तो तुम्हें दर्द होगा, लेकिन वो पेन तुम्हें एक बेटर पेंसिल बनाएगा। और तीसरा कि चाहे तुम्हें किसी भी सर्फेस पर चलाया जाए, तुम अपना मार्क जरूर छोड़ना और हालात जो भी हो तुम लिखते रहना।

पेंसिल की जगह पर जरा खुद को रखकर देखें। हर इंसान बहुत पावरफुल है, हर इंसान में एक क्षमता है बहुत से अच्छे काम करने की, जस्ट लाइक अ पेंसिल। शार्पनर की तरह बहुत सी प्रॉब्लम्स आप पर आती हैं टाइम टू टाइम, बट लाइफ के ये टेस्ट आपको एक बेहतर इंसान बनाकर जाते हैं। और एंड में रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हालात कुछ भी हो, अपनी ड्यूटीज को हमेशा निभाते रहें। पेंसिल की इस कहानी से सीखें और जानें कि आप भी बेहद खास हैं और ये लाइफ आपको मिली है एक खास मकसद के लिए।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: संगीत रुदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
1: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
1: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
1: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
1: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
1: कल्चर ऑफ पंजाब

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अच्छे कर्मों का फल, उस लड़की को आंखें वापस मिल गई और तब उसको इस बात का पता चला कि वो लड़का जो उसको बहुत चाहता था वो भी देख नहीं सकता था, ब्लाइंड था। लड़के ने अब उससे पूछा, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने साफ इनकार कर दिया। अपने टूटे सपने लेकर वो लड़का उस लड़की की जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया, सिर्फ ये कहकर कि मेरी आंखों का ख्याल रखना, देखना कि कभी इनमें आंसू ना आए।
2: जॉनी जॉनी, तूने पी है? मुंह को खोलो।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: पंजाब
2: दे चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
3: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।

हम अक्सर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं उस बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ को ढूंढते हुए। मेरी एक कजन है जो 30 साल की होने वाली थी और वो बहुत अजीब फील कर रही थी इस बारे में। उसको लग रहा था कि शायद सबसे खूबसूरत टाइम उसकी जिंदगी का पीछे रह गया। और हुआ यूं कि वो रोज की तरह अपने बर्थडे वाले दिन जिम गई और एक 80 साल की औरत को वहाँ वर्कआउट करते देख हैरान रह गई। कुछ सवाल पूछे उसने उस औरत से, वो क्या थे, बात करेंगे अबाउट इट बट आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर।

मेरी कजन ने उस औरत से पूछा कि उस लेडी के हिसाब से उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम कौन सा था। तो उस 80 साल की औरत ने कहा कि जब वो छोटी थी और उसके माँ बाप उसे खूब प्यार देते थे, वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल टाइम था। फिर जब वो स्कूल जाने लगी, नई चीजें सीखने लगी, तो वो टाइम भी बहुत खूबसूरत लगा। फिर नौकरी मिली, शादी हुई, दैट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। फिर फैमिली शुरू हुई, अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखा, बहुत खूबसूरती से निकला वो वक्त भी। और आज वो 80 साल की है, तंदुरुस्त है, सबको प्यार देती है, सबसे खूब प्यार लेती है, खूब रिस्पेक्ट लेती है। तो अब वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये टाइम उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम है। तो देखिए, एक सोच ही है जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकती है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। खूब प्यार और रिस्पेक्ट दो और वापस पाओ बहुत सी खुशियां और बहुत सा प्यार।

आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जगा कर चले गए, चेहरे तक आस्तीन वो ला कर चले गए, क्या राज था कि जिसको छिपा कर चले गए, रग रग में इस तरह वो समा कर चले गए, जैसे मुझी को मुझसे चुरा कर चले गए, आए थे दिल की प्यास बुझाने के वास्ते, एक आग सी वो और लगा कर चले गए, लब थर थरा के रह गए, लेकिन वो ए जिगर जाते हुए निगाह मिला कर चले गए। अभी आपने एंजॉय की जिगर मुरादाबादी की कुछ बेहतरीन नज्मों की कलेक्शन में से एक ब्यूटीफुल सी नज्म आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में प्रीत के साथ।